भवन चले भुड़वैया, राधा रानी सखियों के संग ढूंढे कृष्ण कन्हैया, छुप छुप के पिचकारी मारे काना भीगे सारी, श्याम सुंदर ने अपने रंग में रंग दी।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फुड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

मंगलवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामना का साथ में कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज।

ज्ञान गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म र साँझ 8 बजे देखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान अपनी अर्धांगिनी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में काफी वक्त बिताया। आज भी वो चित्रकूट में ही रहते हैं और अपने भक्तों की

तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग 6 माह तक सिर्फ दूध और कंदमूल फल खाकर सात्विक व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान राम का भजन करते हैं, श्री राम की कृपा से उनका मंगल होता है। रिद्धि सिद्धि, यश वैभव, प्रसिद्धि उनके कदम चूमती है।

मनोकामना पूरी होती है, बाकी सब शून्य है। राम नाम का अंक है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जैसे शून्य के पहले अंक लगा देने पर अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही राम नाम जपने से जीवन 10 गुना आनंदमय हो जाता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ राम नाम का कल्पवृक्ष ही कलयुग में व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करता है, सबका कल्याण करता है। राम नाम का जप करते हुए तुलसीदास जी का भांग के पत्तों सा जीवन तुलसी के पत्तों सा पवित्र हो गया।

तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दिन रात राम नाम जपते हैं, दुख उनसे मीलों दूर रहते हैं। वो जीते जी तो श्री राम के प्रिय रहते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें श्री राम के चरणों में जगह मिलती है। पर जो लोग राम नाम भजने में आलस करते हैं, उनका पूरा जीवन अंधकारमय होता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जाप अत्यंत पावन है। राम नाम जपने से गरीब को राजपाट का सुख मिलता है, पर मनुष्य दुनिया के छलावे में आकर हरि भजन से भटक जाता है और अपना बहुमूल्य जीवन वैसे ही व्यर्थ गवा देता है जैसे कोई सुअर कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगते चुगते मर जाता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जाप करने से जन्म और मृत्यु के सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे स्वर्गलोक के मार्ग में लगे बुरे वृक्ष और पेड़ पौधों को तीन लोक में सम्मान मिलता है, वैसे ही राम नाम का जाप करने से नीचे कुल में जन्मा मनुष्य दुनिया में मान सम्मान पाता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर पूर्व जन्म के पाप धोना है और इस जन्म में वास्तविक सुख पाना है तो उसको अपने मन से काम क्रोध मोह माया जैसे समस्त विकारों को निकालकर सिर्फ राम नाम का जाप करना होगा। उसको श्री राम के शरण में जाना होगा।

तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की भक्ति में लीन साधक की गृहस्थी अति अनुपम है। इस खुशहाल गृहस्थी में साधक के मन में बसा राम नाम का रस अति है और राम भजन करने वाली जीभ

तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह श्री राम का ही अवतार है, कलयुग ही हिरण्यकश्यप राक्षस है, प्रभु राम की भक्ति में लीन मनुष्य भक्त प्रह्लाद है। आज स्वयं भगवान राम नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नाम के कलयुगी राक्षस से अपने प्रिय भक्त प्रह्लाद की रक्षा करते हैं। अर्थात प्रभु राम अपने भक्तों को कलयुग में हर बुराई से बचाते हैं।

तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम का भजन कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष मांगने वाले की हर मनोकामना पूरी करता है, ठीक वैसे ही श्री राम अपने भक्तों का मंगल करते हैं। श्री राम संसार की सारी सिद्धियां अपने भक्तों की हथेली पर देते हैं। राम भक्त जीवन के हर मोड़ पर आनंद पाता है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य भी श्री राम की भक्ति में डूबकर भव सागर को पार कर जाता है और एक ज्ञानी संत भी श्री राम की भक्ति छोड़ने के ख्याल मात्र से संसार सागर में ताउम्र मछली की तरह तड़पता रहता है। राम नाम ही संसार सागर में मुक्ति का द्वार है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े दयालु हैं। उनकी उदारता और करुणा का बखान वेद पुराणों में है। उन्होंने शबरी, जटायु और अहिल्या जैसे भक्तों को मोक्ष प्रदान किया और मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार करके उद्धार भी किया।

तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम अपने भक्तों को मन वांछित फल देते हैं। उन्होंने विभीषण को लंका दी, सुग्रीव को राज्य दिया, हनुमान को अपने परम सेवक की उपाधि दी, कई युगों से तड़पते जटायु को मृत्यु प्रदान की, पर तुलसीदास सिर्फ राम नाम के प्रेम को पाना चाहते हैं।

तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार सागर में भांति भांति के जीव हैं, हर जीव की अपनी चाल है। कुछ जीव जल में विचरण करते हैं, कुछ थल पर चलते हैं और कुछ आकाश में उड़ान भरते हैं। पर तुलसीदास के जीवन की गति सिर्फ राम नाम का जाप है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति श्री राम से प्रेम करते हैं, जिनका विश्वास श्री राम है, जिनका जीवन श्री राम का भजन करने से ही चलता है, वो श्री राम का स्मरण करते हुए ही मृत्युलोक और परलोक में कुशलता से रहते हैं। प्रभु राम उनका शुभ मंगल करते हैं।

तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके शरीर में श्री राम का स्मरण करते वक्त, धर्म युद्ध में शत्रु का नाश करते वक्त, दान करते वक्त और गुरु की चरण वंदना करते वक्त रोमांच और खुशी नहीं होती, उनका इस संसार में जीना व्यर्थ है।

0: अपना कोई न पहनोगा वरना कोई
1: अपने घर के राजा तुम छेड़ो मन का बाजा तुम
0: अपने घर के राजा तुम छेड़ो मन का बाजा तुम
1: आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சே பாட்டி
1: கடபடு கடபடு பேட்டு கடபடு ஜப பேட்டு கடபடு சபைத்திர ஹடபடு
2: कब्जियत, ग्यास, अपच, यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभरको जीवनलाई अस

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।
1: फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक।

हाँ तो बांगड़ुओं शुरू हो जाओ और सुर लगाओ। अरे गधो सुर में रेको सुर में भटको मत भटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो

0: अरे नालायको हम नहीं तुम,
1: अरे नालायको हम नहीं तुम,
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे अरे देंगे दुआए,
1: देंगे दुआए।
0: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी क्या।

0: फ्लैशबैक।
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डाल कर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: क्या?
1: ये

0: लूट गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे नहीं।

0: टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पस

0: खाएंगे, अगर करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे,

0: ओल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेट लाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: One oh four eight.

0: ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸುಚ್ಚಪಾಠ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

मेरा जिंदगी को यो पानी को लहर हो के भर छा जिंदगी को यो पानी को लहर हो।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का, नियम के अनुसार दोनों के अलग

समय के अनुसार अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का।

नहीं चला यह तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं, और ये कहां तुम टांग के रख

माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो।

विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले,

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

स्थान बदलने से सुख नहीं मिलता, व्यक्ति बदलने से नहीं। विदेश में बहुत करके देखते, हर साल कोई नया ही जीवन साथी संगाती होते हैं, हनी हनी कहते कहते फिर इनको डायबिटीज हो जाता है। उठते हनी, बैठते हनी, हनी हनी हनी, भाई इतना हनी बोलो,

उनको पूछना पड़े, जैसे गाड़ियां बदलती नहीं, किस साल का मॉडल है आपके जीवन संगाती, दस साल हो जाए कोई शादी किए हुए बहुत ही विरल है, बहुत बड़ी बात हो जाती। ये नौबत अभी हिंदुस्तान में आई नहीं, भगवान बाला कह रहे थे नौबत ना आवे। बदलने से सुख नहीं मिलता किसी चीज को, इन सबके साक्षी बनने से मिलता। कुछ करने से सुख नहीं मिलेगा, विश्राम में सुख है, निश्चय में सुख है। छोड़ में सुख है, सिलिक तस्य सुखम न करोति विराग, वैराग्य कौन सा ऐसा सुख नहीं देता बताओ। पर तथाकथित वैराग्यों को देखने से ऐसा लगता है भागो, छोड़ने का अहंकार बना हुआ है। छोड़ता कुछ छूटा तो नहीं, अहंकार नहीं छोड़ना चाहिए, वस्तु छोड़ने से क्या फायदा, वस्तु छोड़ के अहंकार को बिठा दिया, मजबूत कर दिया। अरे मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, सब छोड़ चुका हूं, बाप रे बाप क्या अहंकार है, वो वाणी में दिखता है, ये कुछ छोड़ा ही नहीं, वही बाहर छोड़ो कि ना छोड़ो, अंदर यदि नहीं छोड़ते तो फायदा ही नहीं, बाहर क्या छूटे, तो छूटा ही नहीं बाहर, फिर अंदर पकड़ के बैठे हुए हैं। एक तरलता कोमलता सहजता अंदर उपजी नहीं है तो साक्षी कैसे, साक्षी तो कैसे उदय हो जाएगा। जहां पर भी अंदर का पकड़ छूटा, तरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, कोमलता झलके ही कठोरता नहीं, कठोरता अहंकार का स्वभाव है, स्वरूप है, समझना। कुछ विशेष बनने की चेष्टा अहंकार की होती है, कुछ नहीं होना ये साक्षी भाव, मैं कुछ नहीं हूं, एको विशुद्ध बोधो है मिति निश्चय वह्निना। ये ऐसी आग है, अंदर ऐसे आग लग जाए सारा दुख उसमें जल जाए, नहीं तो दुख जलाता रहता है हमको। जिस दुख से हम जले जा रहे हैं, जिंदा जले जा रहे हैं हमको, लोगों को देखो, अक्सर लोगों का चेहरे जरा गौर से देखो लगता है कि मरी गए मुर्दे, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं है, कोई मुस्कान नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। ये जीवन का यही तो लक्षण है, उत्साह है, प्रसन्नता है, यही नहीं है। क्यों दुख शोक जला रहा है, भीतर जला दिया इसने। इस शोक को जलाने के लिए एक ज्ञान बोध की अग्नि, तुम विशुद्ध हो, मैं पापी हूं समझ के आत्मग्लानी में लोग जल रहे हैं, इस आत्मग्लानी से हटो, एको विशुद्ध बुद्धो, एक विशुद्ध बोध मात्र स्वरूप, इस अग्नि को जलाओ अंदर, इस अग्नि को जगाओ, और वीतराग होकर
जो अंदर जल रहा है, तुम्हें जला रहा है, ये कामनाएं, ये चाहे वो चाहे वो चाहे, इसकी जो जल चुकी है अंदर, इससे राहत मिल जाए। वीत शोक सुखी बवा, तो दुख से मुक्त होकर के सुखी हो जाओ। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोदस्वं सुखं चर। रात को जंगल में चल रहा था, एक टिमटिमाता हुआ टॉर्च हाथ में लेके, उसमें सेल भी बहुत कम होता, कमजोर सेल, एक ही पांव रखने जैसे जगह इतना ही दिखता था, बाकी सब अंधेरा। वो अपना टॉर्च लेके जा रहा था, देखा कि एक सांप दिखी सड़क पे बीच, बड़े मोटा सांप, डर गया, चुप वहीं बैठा रहा, खड़ा रहा। ये सांप है, ये सांप हटे वहां से तब मैं जाऊं, काफी देर हो चुका है सांप ना हटने की बात है, हवा आए तो लगता था सांप हिल रहा है, थोड़ा हिलता हुआ भी लगा, मगर घर पसीना आने लगा इसको, दिल घबराहट होने लगी, सब सोचने लगा, हनुमान जी को बुलाने लग गया, वहां बैठे जय गुरुदेव बोलने लगा। इसी बीच में बिजली कोंदी, जब बिजली कोंदी वो उस बाल्टी से बंधा हुआ एक रस्सी पड़ा हुआ, बिजली कौन, बिजली के कोंद से ही वो जिसको साफ करके इतना देर घंटों परेशान रहा, परेशानी दूर होगी मुस्कुराते हुए पगडंडी से एक हाथ एक डंडा हाथ में था, उससे वो रस्सी को हटाया, आगे चल पड़ा। बिजली कोंदने भर देरी रही, दुख शोक वो सब मिटने में। इसी तरह से एक बार समझ में आ जाए कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, मैं आकाश जैसे सर्वव्यापी हूं, मुझमें ये सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये ज्ञान हमारे में होते ही कितने सारे, देखो आप अपने भीतर कितनी तरह की भावनाएं उठती है इसको देखो, पहले आप बैठे बैठे लोगों के बारे में आलोचना करते हो, सोचते हो ये ऐसे होंगे वैसे होंगे वैसे होंगे, जरा घूम के देखो तो जितनी बार आपने किसी के बारे में कुछ निर्णय लिया, आलोचना करी, वो सब गलत निकला सही निकला, 90% सब गलत ही निकलते हैं। हाँ, तो फिर भी वही करते जाते हैं। इसी तरह से वो तूफान उठा, गुस्सा आया किसी पर बेटे पर, बहू पर, या बेटी पर, दामाद पर, या पति पत्नी पर, वो तो सहज होता रहता है आपस में, या पड़ोसी पर गुस्सा आया, एक तूफान सा उठा, फिर देखो शांत हो गया। तरह से कितने बार तूफान उठी तेरे मन में, भावनाओं की इस तरह से तूफान उठते रहते हमारे भीतर, उसमें बह नहीं जाना, अपने ही अनुभव से तुम सीख लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर कितनी बार इस तरह का एक आक्रोश था, क्रोध या दुख, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो गए तुम, बचपन में कोई खिलौना खो गया तो टूट गया, इतना दुखी हो गए, इतना ऐसा लगा कि बस